0: रहाउ मिट गई चिंत उने मन आसा करी दया सतगुर गुण तासा
1: मिट गई चिंत पुन्नी इस तरह बोलना पुन्नी पुनी नी पुन्नी
0: मिट गई चिंत पुन्नी मन आसा करी दया सतगुर गुण तासा।

सफल मूरत सफल ओह करी जित रसना उचरै हर हरी सफल ओह माथा संत नमस्कारस चरण पुनीत चल है हर मार्ग कहो नानक भला मेरा कर्म जित भेटे साधु के चरण गौड़ी महला पंजवा गुर का शब्द राख मन माहे नाम सिमर चिंता सब जाहे बिन भगवंत नाही अन कोय मारे राखे एको सोए रहाओ गुर के चरण हृदय उर धार अग्न सागर जप उतर है पार गुर मूरत

0: जन राम रसन वखाणी रहाओ, एकस बिन नाही दूजा कोई।
1: थोड़ा कस के, एकस
0: एकस एकस बिन।

0: रैन दिनस गुण गाओ अनंता गुर पूरे का निर्मल मंता छोड़ उपाव एक टेक राख महापदार्थ अमृत रस चाख बिखम सागर तेई जान तरे नानक जा कौ नदर करे गौड़ी महला पंजवा।
1: इस शब्द की जड़ा पढ़िया गया इस शब्द के आरंभ दे विच जड़ी दूसरी पंक्ति हुंदी देखो सर्व कल्याण वसै मन आए। ये हमेशा याद रखना कि बाणी दे विच शब्द जड़ा बहुत वारी आउंदा और दो तरह के यदि स्पैलिंग होंगे सस्सा रारा बब्बा ते सस्सा रारा पब्बा। ये ध्यान रखना कि जदों पब्बे नाल आवे उदो थोड़ा कस के बोलना सर्ब ते जदों बब्बे नाल आवे उस वेले पोला जा बोलना सस्सा रारा बब्बा सर्ब। जे इहनूं थोड़ा जा भी जोर नाल बोल दिता फिर ये बब्बे का पब्बा बन जाता तो अर्थ भी बदल जाता। सो इस तरह ही यदि नाल दा रलदा मिलदा एक शब्दों का गर्ब गग्गा रारा बब्बा गर्ब पोला जा गग्गा रारा पब्बा गर्ब वो कस के इसी तरह ही सर्ब ते सर्ब दे विच अंतर आ। सो कई बार सुनने वाले नू नहीं पता लगता जां आपनू भी पता नहीं हुंदा। सो जदों भी इहदा उच्चारण करना साडे ध्यान विच होवे कि असीं सर्ब बब्बे नाल बोल रहे हां जां पब्बे नाल इह दोवां नू इक्को तरीके नाल नहीं बोलना। सो इह ध्यान रखना इत्थे शब्द जिवें इन्हां ने बहुत सहज नाल बोलिया सर्ब बब्बे नाल। हांजी
0: गौड़ी महला पंजवा हिरदय चरण कमल प्रभ धारे पूरे सतगुर मिल निसतारे गोविंद गुण गावहो मेरे भाई मिल साधु हर नाम त्याई रहाओ दुलभ देह होई परवान सतगुर ते पाया नाम निशान हर सिमरत पूर्ण पद पाया साध संग भय भरम मिटाया जत कत देखाओ तत रहे असमाय नानक दास हर की सरनाय। गौड़ी महला पंजवा।
1: हुण इत्थे एक शब्द जिहड़ा आया दुलभ इवें इन्हां ने पढ़िया सो इह भी ध्यान रखना बहुत सारियां संगतां जां बहुत वारी सुणीदा कि पाटी सिंह भी दुलभ पढ़दे सो दुलभ लफ्ज़ नहीं आउंदा हमेशा इह दुलाबी आउणा। कई वारी रारा आ जाएगा पैर विच वह भी दस्या जाएगा पर जदों दद्दे अंकड़ लल्ला भब्बा आ गया यह दुलभ इनू इस तरह ही बोलना दुलभ। और इसी शब्द का जिहड़ा आखिरी बंद जात कत देखो तत जात कत तत ये पोले शब्द बोलने हैं यूं अधक ला के नहीं जात कत तत कस के नहीं बोलना जात कत देखो तत रहे समाए। हाँ जी
0: गौड़ी महला पंजवा गौर जी के दर्शन कहो।

0: चरण कमल हिरदय उर धारी मन तन धन गुर प्राण आधारी सफल जन्म हुए परवान गुर पार बहम निकट कर जान संत धूर पाइए वडभागी नानक गुर भेटत हर स्यों लिव लागी गौड़ी महला पंजवा।
1: ये भी शब्द जिहड़ा इक आउंदा जी सियो ध्यान रखना इत्थे भी बिंदी ना लगे क्योंकि ये पुरातन जिहड़ी उच्चारण आ ये पुराने शब्द हुण साडी बोली विच नहीं रहे एक ये शब्द बनता सौ सौ तो स्यो पर साडी अज दी बोली च असीं नासकी ज़्यादा बोलते हैं इसे तरह ज्यों क्यों त्यों स्यों असीं सारिआं ते ही नासकी उच्चारण करते हैं। सो उस वेले दा जिहड़ा पुरातन उच्चारण आ पुरातन बोली है गुरमुखी 500 साल पहलां दी उच्चारण बाणी दे विच सो उस वेले ये उच्चारण नहीं सी। हुण असीं बहुत सारे शब्दों से जिते लोड़ भी नहीं होंगी उत्थे भी नासकी नक दे विच बोलते हैं सो बिंदी का उच्चारण होंदा। सो ये बार बार बाणी दे विच बार बार ये शब्द आने ज्यो क्यो त्यो सो इत्थे ध्यान रखना कदे भी नासकी उच्चारण ना हो बिंदी ना लगे। हाँ जी
0: गौड़ी महला पंजवा करै दुह करम।

संत है संग बैस गुण गाय ताका रंग ना उतरै जाय बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया आन रंग फीके सब माया गुर रंगे से पए निहाल कहो नानक गुर पए है दयाल गौड़ी महला पंजवा सिमरत सुवामी किल विखनासे सुख सहज आनंद निवासे राम जना कौ राम भरोसा नाम जपत सब मिट्यो अंदेसा रहाओ साध संग कछ पौ ना प्राती गुण गोपा।

0: नानक बलिहारा सफल दर्शन गोबिंद हमारा गौड़ी महला पंजवा कोट बिघन हिरे खिन माहे हर हर कथा साध संग सुनाहे पीवत राम रस अमृत गुण जास जप हर चरण मिटी खुद तास रहाओ
1: खुद पुलज
0: जप

मन तन शीतल चरण हर राते, पै पंजन प्रभ मन ना बसाही, डरपत डरपत जन्म बहुत जाही, रहाओ जाके हृदय बस्यो हर नाम, सगल मनोरथ ताके पूर्ण काम, जन्म जरा मृत जिस वास, सो समरथ सिमर सास गिरास, मीत साजन

साधु संग सिमर गोपाल बिन नावै झूठा तन माल रहाओ रूपवंत सो चतुर सियाणा जिन जन मानिया प्रभ का भाणा जग मह आया सो परवान घट घट अप

ओत पोत जन हर सियो राता, लोभी अनद करै पेख तना, जन चरण कमल सियो लागो मना, बिसर नहीं एक तिल दातार, नानक के प्रभ प्राण आधार। गौड़ी महला पंजवा, राम रसायन जो जन गीधे, चरण कमल।

0: गुण गोविंद अचरज परताप वण त्रिण त्रिपवन पूरन गोपाल ब्रह्म पसार जीय संग दयाल कहो नानक सा कथनी सार मान लेत जिस सिरजनहार गौड़ी महला पंजवा नित प्रत नावन राम सर कीजै चोल महारस हर अमृत पीजै रहाओ निर्मल उदक गोविंद का नाम मज्जन करत पूरन सब काम संत संग तह गोष्ट होए कोट जन्म के किल विख खोए सिमरह साध करह आनंद मन तन रविया परमानंद जिसह प्राप्त हर चरण निधान नानक दास तिसह कुर्बान।
1: इस शब्द में जिवें इन्हां ने सारे शब्द सही पढ़िया क्योंकि इन्हां दी तां संथिया होई हुई है सो इस करके कई बार साडे ध्यान च नहीं हुंदा। हुण इत्थे पहली पंक्ति पिछले शब्द की आई है नित प्रत नावण इहनूं भारा करके बोलना लिखिया नावण ही है सो ध्यान रखना नित प्रत नावण। इस तरह झोल महारस हर अमृत पीजै थोड़ा जिहा कस के पीजै पीना। फिर अगली पंक्ति च आया निर्मल उदक उहनूं उदक नहीं कहना उदक उदक दा अर्थ है पाणी उह पोला जिहा बोलना निर्मल उदक। ते अगे एक शब्द आया मज्जन वह जिथे भी बाणी च आएगा बहुत वारी आएगा उहदा हर वारी उचारण मज्जन ही हुंदा वह मजन नहीं होना उहदा अर्थ मज्जन जो तीर्थां ते इशनान किया जाता किसी खास पुरब ते किसी खास तीर्थ स्थान ते जिहड़ा इशनान करिए उहनू मज्जन कहिंदे मज्जन दा अर्थ तां इशनान ही आ पर किसी खास दिन किसी खास तीर्थ स्थान ते जिहड़ा इशनान करिए उहनू मज्जन कहिंदे आ। ते बहुत वारी बाणी च शब्द आउणा सो इहनू पक्का याद कर लेना मज्जन। हाँ जी

0: मन बच क्रम प्रभ अपना त्याई नानक दास तेरी सरनाई।
1: मन बच नहीं कहना, पोला बोलने बच बच मैं ना बचन बचन तो शब्द बने बच ज्यादा नहीं खस के कहना। मन बच क्रम,
0: मन बच क्रम प्रभ अपना त्याई।

शीतल मन पए मार्ग चलत सगल दुख गए नाम जपत मन पए आनंद रस गाए गुण परमानंद रस गाए गुण परमानंद नाम जपत मन पए आनंद रस गाए गुण परमानंद खेम भया कुशल घर आए भेटत साध संग गई बलाए रहाव नेत्र पुनीत पेखत ही दरस धन मस्तक चरण कमल ही परस।

पाए सुख पाया लग दस है पाए आप गया ता आप है पए कृपा निधान की सरनी पए जो चाहत सोई जब पाया तब ढूंढन कहा को जाया आस्थिर पए बसे सुख आसन गुर प्रसाद नानक सुख बासन गाउड़ी महला पंजवा कोट मज्जन किनो इसनान लाख अरब खरब दिनो दान जा मन वस्यो हार को नाम सगल पवित गुण गाए गोपाल पाप मिट है साधु सरन दयाल रहाओ बहुत उर्द तप साधन साधे अनेक लाभ मनोरथ लादे हर हर नाम रसन आराधे सिमरत शास्त्र वेद बखाने योग ज्ञान सिद्ध सुख जाने नाम जपत प्रभ स्यो मन माने अगाध बोध हर अगम अपारे नाम जपत नाम हृदय बिचारे नानक काओ प्रभ कृपा धारे गौड़ी महला पंजवा सिमर सिमर सिमर सुख पाया चरण कमल गुर हृदय बसाया गुर गोबिंद पार ब्रह्म पूरा तिस है आराध मेरा मन धीरा रहाओ आन दिन जपाओ गुरु गुर नाम ताते सिद्ध पए सगल काम दर्शन देख शीतल मन पए।

जानी तुम ही सज्जन सुहेले सर्ब सुखा मैं तुझ ते पाए मेरे ठाकुर अगह अतोले वरन न साको तुमरे रंगा गुण निधान सुख दाते अगम अगोचर प्रभ अभिन।

मृत पू मंडल सर्व समानो एकै ओही शिव शिव करत सगल कर जोर है सर्व मया ठाकुर तेरी दोही पतत पावन ठाकुर नाम तुमरा।

0: तक गनिया जान पार ब्रह्म रंग राते सुख सहज आनंद ते ना संग उन समसर अवर ना दाते जगत उदाहरण से ही आए जो जन दर्श प्यासा उनकी शरण पर सो तरिया संत संग पूरन आसा ताके चरण परो ता जीवा जन कै संग निहाला भगतन की रेण होए मन मेरा ओहो प्रभु किरपाला राज जोबन अवध जो दीसा सब किछ जुग मह काटिया नाम निधान सद नवतन निर्मल एहो नानक हर तन खाटिया।
1: ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ। ਸੋ ਫਿਰ 208 ਅੰਗ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਸੰਥਿਆ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਜਲ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਲਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

ते तानते गुर शबद दीपक परगासा भ्रम की जाली ताकी काटी जा कौ साध संगत विश्वासा तारी रे भवजल तारू बिखड़ा बोहेथ साधु संगा पूर्ण होई मन की आसा गुर भेट्यो हार रंगा नाम खजाना भक्ति पाया मन तन त्रिपत आगाए नानक।

कर प्राण पत मोरे मोहे अनाथ सरण प्रभ तोरी अंध कूप मह हाथ दे राखाओ पशु सियानप उकत ना मोरी रहाओ करन करावन सब किस तुम ही।

पुरख बिधाते ओढ़ पहुचावहो दाते रहाव। तुमरा मर्म तुमा ही जानिया तुम पूर्ण पुरख बिधाते राखाव शरण अनाथ दीन काओ करहाव हमारी गाते। सर तरन सागर बोहेथ चरण तुम्हारे तुम जानहो अपनी पाते। कर कृपा जिस राखाव संगे ते पार पराते। ईत ऊत प्रभ तुम समरथा सब किश तुम रहे हाथे।

मन जापे संत प्रसाद नानक हर भेटे मन तन शीतल त्रापे गौड़ी महला पंजवा सहज समायो देव मोह पाओ सतगुर भये।

भयो प्रगास सर्ब उजियारा गुर ज्ञान मनह प्रगट आयो अमृत नाम पियो मन त्रिपतिया अन भय ठहरायो मान आग्या सर्ब सुख पाए दुख है ठाओ गवायो जौ सुप्रसन्न भय प्रभ ठाकुर सब आनंद रूप दिखायो ना किछ आवत ना किछ जावत सब खेल कियो हर रायो कहो नानक अगम अगम है ठाकुर भगत टेक हर नायो गौड़ी महला पंजवा पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर मन ताकी ओट गहिजै रे जिन धारे ब्रह्मांड खंड हर ताको नाम जपीजै रे रहाओ मन की मत त्यागहो हर जन हुक्म बूझ सुख पाइयै रे जो प्रभ करै सोई पल मानहो सुख दुख ओही त्याइयै रे कोट पतत उधारे खिन मह करते बार ना लागै रे दीन दर्द दुख भंजन स्वामी जिस भावै तिसह निवाजै रे सब को मात पिता प्रतपालक जीव प्राण सुख सागर रे देंदे तोट नाही तिस करते पूर रहो रतनागर रे जाचक जाचै नाम तेरा स्वामी घट घट

प्रसाद सुख नाही रे हर भगत बिना जीत जन्म एहो रतन अमोलक साध संगत जप एक खिना रहो।

0: एक रहाओ अनक जुगत नहीं पाया गुर चाकर ले लाया मारे पंच बिखा दिया गुर कृपा ते दल साधया बख्शीस वजह मिल एक नाम सुख सहज आनंद बिश्राम प्रभ के चाकर से भले नानक तिन मुख ऊजले गौड़ी महला पंजवा जियरे ओला नाम का अवर जे करन करावनो तिन मह पाओ है जाम का रहाओ अवर जतन नहीं पाईया वड्डा भाग हर त्याईया लाख हिकमती जानिया आगा तिल नहीं मानिया अहं बुद्ध कर्म कमावने ग्रह बालू नीर बहावने प्रभ कृपाल कृपा करै नाम नानक साधु संग मिलै गौड़ी महला पंजवा।
1: हाँ जी, ये जिहड़ा शब्द आपां पढ़िया इहदी पहली पंक्ति दे दर्शन करो, गौड़ी महला पंजवा जियरे ओला नाम का। ये जिहड़ा शब्द इकट्ठा ही है जियरे, पर जिहड़े पातशाह दे सरूप ने गुरु महाराज जी दे जो तुसीं उत्थे दर्शन करोगे उत्थे जियरे रे जिहड़ा वखरा लिखिया होया। सो इस करके ये शब्द जिहड़ा याद ही करना जियरे। इस तरह के जिहड़े शब्द ने वह नोट करने ते याद करने जरूरी होंदे ने, क्योंकि असीं जदों महाराज जी दे सरूप तों पाठ करांगे जे शब्द याद नहीं होणगे फिर असीं उवें ही पढ़दे हाँ जिवें लिखिया हुंदा। सो इस करके जदों महाराज जी ने बाणी उच्चारण कीती आ ते लिखवाई उस वेले तां लड़ीवार सरूप ही सी ना। सो ये बाद विच पद विशेद किए गए जिवें जिवें किसी नूं समझ लगी उन्हां ने पद विशेद बनाए। सो इस करके इन्हां विच बहुत फर्क आउंदा। जिस तरह महापुरशां ने आपां नूं पहलां भी दस्सिया सी कुंजी गुर सौ पाई, सो वह पद विशेद जदों पढ़ांगे सौ पाई अड अड भी हो जाता। सो इस करके शब्दां नूं बहुत याद रखना ते नोट करना। ये जियरे पाठ इकट्ठा ही आ, ठीक है जी। महाराज जी के सरूप से अड आएगा जियरे, पर जियरे इकट्ठा ही पाठ आ, ये याद करना जी। हाँ जी,
0: गौड़ी महला पंजवा बारना बलिहारना लख बरिया।

0: हर रस जिन जन चाखिया ताकि तृष्णा लाथिया हर विश्राम निध पाया सो बाहर न कत ही ताया हर हर नाम जा कौ गुर दिया नानक ताका पौ गया।
1: गौड़ी महला पंजवा।

0: नाव निध सिद्ध जो जान है हार प्रभ धनी किश नाही ताक कमी करने हार पछानिया सर्ब सुख रंग माणिया हर धन जा कै गृह वसै कहो नानक तिन संग दुख नसै गौड़ी महला पंजवा गर्भ बड़ो मूल इतनो रहन नहीं गहो कितनो रहाओ बेबरजत बेद संतना वाहू स्यों रे हितनो हार जुआर जुआ विदे इंद्री वस लै जितनो
1: जिवे पाठ भाई साहब जी ने कीता है बेबरजत बेबरजत कठा जा पाठ नहीं करना थोड़ा नखेड़ के बेबरजत इसी तरह ही करना हाँ जी
0: हरन भरन संपूर्णा चरण कमल रंग चरण कमल रंग रितनो नानक उदरे साध संग

अज्ञानी मानुख भया जो नाही सो लोरै रैन अंधारी कारिया कवन जुगत जित भूरै भ्रमतो भ्रमतो हारिया अन

0: मुकत भया बंधन गुर खोले जन नानक हार गुण गाए गौड़ी पूर्वी महला पंजवा।
1: जिवें भाई साहब जी ने पढ़िया इसी तरह ही नोट कर लेना जी, पिछे शब्द आया ज्यों हस्ती ना वाए उपोला जहा नहीं बोलना उन्हों भारा करके नहाउण दा जिवें तीर्थ नहावा आप पढ़िया सी उसी तरह ज्यों हस्ती ना वाए।
0: गौड़ी पूर्वी महला पंजवा मेरे मन गुर गुर गुर सद करिया रतन जन्म सफल गुर किया दर्शन कौ बल हरिया रहाओ रतन जन्म।

0: सेवा गुण कीरत निध मोरी रहाओ तू ही रस तू ही जस तू ही रूप तू ही रंग आस ओट प्रभ तोरी तू ही मान तू ही धान तू ही पत तू ही प्राण गुर तूटी लै जोरी।
1: इतनी थोड़ा जा इनू सॉफ्ट जा बोलना, तू ही रस तू ही जस तू ही रस तू ही जस, इस तरह ज्यादा कस के नहीं, ये थोड़ा जा जिवें दरमियानी शब्द ने, तू ही रस तू ही जस।
0: तू ही रस तू ही जस तू ही रूप तू ही रंग आस ओट प्रभ तोरी तू ही मान तू ही तान तू ही पत तू ही प्राण गुर तूटी लै जोरी तू ही गृह तू ही बन तू ही गाओ तू ही सुन है नानक नेर नेरी।
1: जी भी इसी तरह ही तू ही गृह तू ही बन, बन जंगल, ठीक है जी, बन नहीं कहना इन्हू, भुला जा बोलना बन। तू ही गाओ तू ही सुन, तू ही गाउण वाला तू ही सुन वाला, इत सुन नहीं भुला जा सुन। और नाल ही इस शब्द में यह भी ध्यान रखना कि जिहड़ा तू ही शब्द आ वह कई बार टिप्पी नाल आ रहा कई बार टिप्पी तो बिना आ रहा, दोवां दा अंतर आ, अर्थ भावें उही है पर उचारण दे विच ध्यान रखना कि सारियां नूं तू ही नहीं कहना। यही नियम जिहड़ा बाणी दे विच जिवें तू शब्द आउंदा उत्थे भी आउंदा, कई थावां ते तू बिना टिप्पी तो आउंदा कई थावां ते तू टिप्पी नाल आउंदा, अर्थ भावें उही हुंदा पर उपभाषा दा अंतर आ जांदा।

महापुरखन इयों कहया बिन हर भजन नाही निस्तारा सूख न किन्हू लहया तीन भवन की लखमी जोरी बूझत नाही लहरे बिन हर भगत कहा थित पावै फिर तो पहरे पहरे अनक बिलास करत मन मोहन पूर्ण पूर्ण होत न कामा जल तो कबहू न बूझत जल तो कबहू न बूझत सगल ब्रथे बिन नामा हर का नाम जपहो मेरे मीता एह सार सुख पूरा साध संगत जन्म मरण निवारै नानक जन की धूरा गौड़ी माला महला पंजवा मोह कौ एह बिद को समझावै करता हुए जनावै रहाओ अनजानत किश इनहक मानो जप तप कछु ना साधा दह दिस लै एहो मन दौरायो कवन कर्म कर बाधा मन तन धन भूमका ठाकुर हाँ इस का एहो मेरा परम मोह काश सूजस नाही एह पैखर पए पैरा तब एहो कहा कमावन परया जब एहो कछु ना होता जब एक निरंजन निरंकार प्रभ सब किसी आप है करता अपने कर्तव आपे जानै जिन एहो रचन रचाया कहो नानक करनहार है आपे सतगुर परम चुकाया।

0: तीरथ नहाए अर धर ने भ्रमता आगै ठौर न पावै ऊहा काम न आवै एह बिद ओह लोग नहीं पतियावै चतुर वेद मुख बचनी उचरै आगै महल ना पाइय बुझै नाही एक सुधाखर ओह सगली झाख चखाइय नानक कहताओ नानक कहतो एहो बिचारा जे कमावै सो पार ग्रामी गुरसेवहो अर नाम त्यावहो त्यागहो मरहो गुमानी गौड़ी माला पंजवा मादाओ हर हर हर मुख कही है।
1: जेड़ा पिछला आपां शब्द पढ़िया जी उहदे विच एक पंक्ति आ रही है देखो दर्शन करो एह बिद ऊहा कामना आवै एह बिद ओह लोग नहीं पति आवे दूजा बंदा पहला जिहड़ा आपां शब्द पढ़िया ते महाराज जी दे सरूप ते पद विशेष जिहड़े सरूप ने उहदे विच इह शब्द ओह लोगन ही पति आवे इस तरह लिखिया होया पद शेर पोथी साहब जिहड़ियां होणगियां श्रोमणी कमेटी तों छपियां उहनां विच इही पाठ आ ओह लोगन ही पति आवे। सो इह नोट कर लैणा जिवें भाई साहब जी ने पढ़िया ओह लोग नहीं पति आवे इह पाठ जिहड़ा इस तरह याद करना और इस तरह नोट कर लेना क्योंकि महाराज जी के सरूप से लोगन पाठ है फिर जी असी नोट नहीं करांगे फिर उस तरह ही पढ़ांगे सो ये ध्यान रखना जी।
2: ये वैसे मुख पाठ एवें ही है जिवें तुसीं सुनिया ते फिर वो लोगन ही पति आवे फिर वो पाठांतर उन्हों दूसरा पाठ कहा जाता है भी इस तरह भी क्योंकि लिखा होया मुख पाठ ते गाउणी पाठ इस तरह इनू समझना मुख ओह लोग नहीं पति आवै ते गाउणी पाठ लोगन ही पति आवै ए भी कीता गया है।
0: गौड़ी माला पंजवा माधव हर हर हर मुख कहिय हमदे कछु न होवै स्वामी जौ राखहौ त्यौ रहिय रहाउ।
3: सारे किते महला शब्द आया सी नाल इत्थे हुण कल्ला पंजवा आया है इत्थे भी कल्ला पंज नहीं कहना पंजवा ही बोलना है जिवें उचारण कीता है भाई साहब जी ने पाठ। सो पहला इदां दा कोई पाठ नहीं दर्शन होए तां कई बार भुलेखा लग जांदा जिथे कल्ला इदां अखर हुण लिखिया आया जिस तरह उचारण कीता है पंजवा इसे तरह ही करना है। हां जी
0: अरहाओ क्या किश करै के करना है हारा क्या इस हाथ बिचारे जित तुम लावहो तित ही लागा पूर्ण खसम हमारे करहो।

0: जियो जिन प्रभ त्याया सो भावंता जियो जैस साधु संगत तेस सब सुकरनी जियो जन नानक सहज समाई जियो गौड़ी महला पंजवा माज।
1: ये शब्द विच भी जिहड़ी तीजा अंक सी उहदे विच शब्द है होए बैरागी तीरथ नावंता जियो। भाई इकबाल सिंह शोधी उच्चारण किया इतने नावंता यह भी नहाने का वाचक समझना नावंता ही उच्चारण करना।
0: गौड़ी महला पंजवा माज आओ हमारा राम प्यारे जियो रहन दिनस सास सास चितारे जियो संत देव संदेशा पै चरणारे जियो तुद बिन

तन हरिया जियो, दर्शन पेखत सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप तरिया जियो, एहो अजर नानक सुख सही है जियो, गौड़ी माज महला पंजवा, सुन सुन साजन

जिस मिलया मन जीवै भाई जियो, गुर प्रसादी सो हर हर पाई जियो, सब किश प्रभ का प्रभ किया जाई जियो, प्रभ कौ साध बल जाई जियो, एहो निदान जपै।

0: तुम्हारा सुख वसा, सच शब्द नीसान रहाओ। सबे गल्ला जातिया, सुन कै चुप किया, कद ही सुरत न लधिया, माया मोहड़िया।
1: एवी पाठ सबे कस के सस्से ते जोर दे के सबे गल्ला जातिया, ए उच्चारण ठीक है।
0: दे बुजारत सारता से अखी डिठड़िया, कोई जे मूर्ख लोभिया, मूल ना सुनी कहिया। एकस दोहो चाहो क्या गणी, सब एकत साध मुठी, एक अद नाए रसियड़ा, का विरली जाए वुठी। भगत सच्चे दर सोहदे, आनंद करह दिन रात, रंग रत्ते परमेसर है, जन नानक तिन बल जात।
2: इथे जेड़ा शब्द आया जी साध, इकत साध मुठी, ये भी ध्यान रखना। बहुत बारी शब्द बाणी दे विच आएगा, कई बार ये ससे कन्ना धद्दी नाल साध, कई बार ससे कन्ना धद्दी नाल साध, ये ध्यान रखना कि जदों धद्दी नाल आएगा कस के साध, साधु का अर्थ होएगा, तो जदों आएगा दद्दा साध, उत्थे होएगा स्वाद। सो उत्थे पूला जिहा उच्चारण करना जिस तरह आप जी ने सुनिया। सो ध्यान रखना जी कि असी ज़्यादातर साध ही बोलते हैं धद्दी नाल। सो इनू जिथे दद्दा आ गया पूला जिहा साध, धद्दी नाल साध, ये ध्यान रखना जी। हाँ जी।
0: गौड़ी महला पंजवा मांज, दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम, आठ पहर आराधी है, पूरन सत गुर ज्ञान रहाओ। जित कट वसै पार ब्रह्म, सोई सुहावा थाओ, जम कंकर नेड़ न आवई, रसना हर गुण गाओ। सेवा सुरत ना जानिया, ना जापै आराध, ओट तेरी जग जीवना, मेरे ठाकुर अगम अगाध।

दियो गुर, गुर सच्चा सिरजनहार, गुर तुठै सब किछ पाया, जन नानक साध बलिहार। गौड़ी माज महला पंजवा, हर राम राम राम रामा, जप पूर्ण होए कामा रहाओ। राम गोबिंद जपेदया होया, राम गोबिंद जपेदया होआ मुख पवित्र। हर जस सुनिया जिस ते सोई भाई मित्र, सब पदार्थ सब फला सर्ब गुणा जिस माहे, क्यों गोबिंद मनहो विसारिया जिस सिमरत दुख जाहे। जिस लड़ लगया जीविया, पवजल पैया पार, जिस लड़ लगया जीविया पवजल पैया पार। मिल साधु संग उधार होए, मुख उजल दरबार, जीवन रूप गोपाल जस संत जना की रास, नानक उबरे नाम जप दर।

0: क्रोध संकट दुर्जन की ताते ऐन सुभागौ रहाओ। सुख दुख दोनों सम कर जानै और मान अपमाना। हरख सोक तै रह अतीता तिन जग तत पछाना। उस्तत निंदा दोउ त्यागै खोजै पद निर्बाना। जन नानक एहो खेल कठिन है किन्हू गुरमुख जाना।
1: इस शब्द के आरंभ में जिवें आप जी ने सरवण किया कि साधो मन का मान त्यागो, भाई साहब जी ने इस तरह पढ़िया और इसे तरह ही आप जी ने ध्यान रखना जी, क्योंकि बहुत ही बार ये जिहड़ा पिछे ऊड़े नूं औंकड़ हुंदी आ उहनूं छड़ दिता जांदा, सीधा पढ़िया जांदा मान त्यागो ऐन सुभागो। सो ध्यान रखना जी, त्यागो गग्गा ऊड़े औंकड़, इसे तरह ही भागो जिथे भी उड़े नौकड़ आएगी पूरा उच्चारण करके जाना जी, ये ध्यान रखना जी।
0: गौड़ी महला नावा साधो रचना राम बनाई। एक बिनस है एक अस्थिर मन है अचरज लख्यो ना जाई रहाओ। काम क्रोध मोह बस प्राणी हर मूरत बिसराई। झूठा तन साचा कर मान्यो जो सुपना रह नाई। जो दिसै सो सगल बिनासै ज्यों बादर की छाई। जन नानक जग जान्यो मिथ्या रहयो राम सरनाई।
2: बांदर ते बादर शब्द विच थोड़ा ही अंतर है, एक बिंदी रही, पर इत्थे स्पष्ट कर दिता जावे भी बादर बदलां दी गल हो रही है। बांदर जानवर हुंदा है, पर जे तुसीं थोड़ा जिहा वी किते उक गए तां तुसीं वेख लो अर्थ की बन जाणा है। हुण इत्थे बादर पाठ है, होर भी अनेक थावां ते आएगा, बदलां दी गल इत्थे महाराज जी ने कीती है, बादर ही पाठ करना।

0: ना जाई चंचल तिसना संग बसत है या ते थिर ना रहाई रहाओ कठन क्रोध घट ही के भीतर जिहे सुध सब बिसराई रतन ज्ञान सब को हिर लीना ताश्यो कश ना बसाई।
1: जिवें इत्थे पाठ आया यइए नूं कन्ना या इत्थे इहदा मतलब बणदा जिस तों यइए कन्ना या जिस तों जे जा बोलोंगे तां फिर जां जिवें और कह दिंदे असीं इस तरह है जां इस तरह नहीं है जां अंग्रेजी विच असीं और कहिंदे आ इत्थे या इहदा मतलब जिस तरह। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾ ਤੇ ਯਾ ਸਿਮਿਲਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ
0: ਜੋਗੀ ਯਤਨ ਕਰਤ ਸਭ ਹਾਰੇ ਗੁਣੀ ਰਹੇ ਗੁਣ ਗਾਈ।

मानस जन्म अमोलक पायो वृथा काहे गवावाओ रहाओ। पतत पुनीत दीन बंद हर सरन ताहे तुम आवाओ, गज को त्रास मिट्यो जेहे सिमरत तुम काहे बिसरावाओ। ताज अभिमान मोह माया फुन भजन राम चित लावाओ, नानक कहत मुकत पंथ एहो गुरमुख होए तुम पावाओ। गौड़ी महला नावा को माई भूल्यो मन समझावै, वेद पुराण साध मग सुन कर निमख न हर गुण गावै रहाओ। दुर्लभ देह पाए मानस की बिरथा जन्म सिरावै, माया मोह महासंकट बन ता स्यों रुच उपजावै।

0: हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे मानस देह बहर मानस देह बहर नह पावै कशु उपाओ मुकत का कार रे नानक कहत गाए करुणा मै भाव सागर कै पार उतर रे
1: उतर रे
0: का नानक कहत गाए करुणा मै भाव सागर कै पार उतर रे
2: राग गौड़ी अष्टपदिया महला पहला गौड़ी ग्वारेरी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद निद सिद्ध निर्मल नाम विचार पूरन पूर रहया बिखमार त्रिकुटी छूटी बिमल मझार गुर की मत जिये आई कार इन विद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ एक सुख मानिया सहज मिलाया निर्मल बाणी परम चुकाया लाल पए सूहा रंग माया नदर पई बिखठाक रहाया उलट पई जीवत मर जागया शब्द रवे मन हर सियो लागया रस संग्रह बिख पर हर त्यागया पाए बसे जम का पौ भाग्या साध रहे बादं अहंकारा चित हर सियो राता हुक्म अपारा जात रहे पत के आचारा दृष्ट पई सुख आत्म तारा तुझ बिन कोई न देखो मीत किस सेवाओ किस देवाओ चीत किस पूछाओ किस लागो पाए किस उपदेश रहा लिव लाए गुर सेवी गुर लागो पाए भगत करी राचो हर नाए सिख्या दीख्या भोजन पाओ हुक्म संजोगी निज कर जाओ गर्भ गतं सुख आत्म ध्याना जोत पई ज्योति माहे समाना लिखत मिटै नहीं शब्द नीसाना करता करना करता जाना नह पंडित नह चतुर सियाना नह भूलो नह परम पुलाना कथाओ न कथनी हुक्म पछाना नानक गुरमत सहज समाना गौड़ी ग्वारेरी महला पहला मन कुंचर काया उद्याना गुर अंकस सच शब्द नीसाना राज द्वारा सोब सो माना चतुराई नह चीनिया जाए बिन मारे क्यों कीमत पाए रहाओ कर्म है अमृत तस कर लेई निन्नाकार न कोय करेई राखै आप वडयाई देई नील अनील अगन एक ठाई जल निवरी गुर बूझ बुझाई मन दे लिया रहस गुण गाई जैसा कर बाहर सो तैसा बैस गुफा मह आखो कैसा सागर डूगर निर पाओ ऐसा मुए कौ कहो मारे कौन निडरे कौ कैसा डर कवन शब्द पछाना तीने पावन जिन कहया तिन कहन वखानिया जिन बूझिया तिन सहज पछानिया देख विचार मेरा मन मानिया कीरत सूरत मुकत एक नाई तेही निरंजन रहया समाई निज कर व्याप रहया निज ठाई उस्तत करह केते मन प्रीत तन मन सूचा साच सोचीत नानक हर पज नीता नीत गौड़ी ग्वारेरी महला पहला ना मन मरा ना कारज होए मन वस दूता दुरमत दोए मन माना गुरते एक होए निर्गुण राम गुण है वस होए।

0: मन भूलो माया कर जाए, काम बेरुदा रह न ठाए, हर पज प्राणी रसन रसाए, गैवर हैवर कंचन सुत नारी, बहु चिंता पिड़ चाले हारी, जुआ खेलन काची सारी, संपाव संची पय विकार, हरख सोख उबे दरबार, सुख सहजे जप हृदय मुरार, नदर करे ता मेल मिलाए, गुण संग्रह औगण शब्द जलाए, गुरमुख नाम पदार्थ पाए, बिन नावै सब दुख निवास, मनमुख मूड माया चित वास, गुरमुख ज्ञान तुर कर्म लिखे आस, मन चंचल धावत फुन धावै, साचे सूचे मैल न पावै, नानक गुरमुख हर गुण गावै, गौड़ी ग्वारेरी महला पहला, हौमै करत्या नह सुख होए, मनमत झूठी सच्चा सोए, सगल बिगूते भावै दोए, सो कमावै तुर लिखिया होए, ऐसा जग देखिया जुआरी, सब सुख मागै नाम बिसारी, रहाओ अदिष्ट दिसै ता कहया जाए, बिन देखे कहना बिरथा जाए, गुरमुख दीसै सहज सुभाए, सेवा सुरत एक लिवलाए, सुख मांगत दुख आगल होए, सगल विकारी हार परोए, एक बिना झूठे मुक्त न होए, कर कर करता देखै सोए, तृष्णा अग्न शब्द बुझाए, दूजा परम सहज सुभाए, गुरमति नाम हृदय वसाए, साची बाणी हर गुण गाए, तन मह साचो गुरमुख पाओ, नाम बिना नाही निज ठाओ, प्रेम परायण प्रीतम राओ, नदर करे ता बूझै नाओ, माया मोह सर्ब जंजाला, मनमुख कुचील कुचित बिकराला, सतगुर सेवे चूकै जंजाला, अमृत नाम सदा सुख नाला, गुरमुख बूझै एक लिवलाए, निज कर वासै साच समाए, जमण मरना ठाक रहाए, पूरे गुरते एह मत पाए, कथनी कथा न आवै और, गुर पुछ देखिया नाही दर होर, दुख सुख पाणा तिसै रजाए, नानक नीच कह लिवलाए।
1: अंतलियां पंक्तियां दा दोनों पाठ सारे रल मिल के कर लो, समाप्ति करिए जी।

है, कोटान कोट शुक्र है, चार पहर रहन आई है, अपने भाणे अंदर सुख दी बतीत करवाउणी। ग्रीवनवाज सवेर तो आप जी ने अपार बख्शिशां कीतियां, संगत नूं खुले दीदार बख्श के निवाजिया है।

मेरो सुखदाता बंधन काट करे मन निर्मल पूर्ण पुरख विधाता रहाउ नानक प्रभ बनासी ताकि सेवन बिरती जासी आनंद करह तेरे दासा जा पूर्ण हुई आसा बिलावल महला पंजेवा ताती वा न लगई पार ब्रह्म शरण आई च्यो गिरधम मारै राम कार दुख लगे न पाई सतगुर पूरा भेटिया जन बणत बनाई राम नाम

एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीर्त आकिया करते का होई विचार तित कर गावो सोहिला सिवरहु सेजनहार तुम गावो मेरे निर्भव का सोहिला हो वारी चित सोहिला सदा सुख हुए रहा नैत नैत जीअड़े समालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पावे तिस दाते कवन सुमार संबत साहा लेकिया मिलकर पाबहु तेल देहो सजन असीसड़िया ज्यों होवे साहिब स्यों मेल कर करे हो पहुचा सदड़ नित पवन सदन हारा सिमरिया नानक से देह आवन रंग संभला पहला छे कारे छे गुरु छे उपदेश गुर गुर एको वेस अनेक बाबा जय कर करते कीर्त हुए सो कर अक वंडाई तोए रहा विश्वे चसिया घड़िया पहरा तिती वारी माह हुआ सूरज एको रुत अनेक नान करते के केते वेस रगत नासरी महला पहला गगन में ताल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती तूप मल्यान लो पवन चबरो करे सगल बनराए फूल अंत जो

गुणा के दाते स्वामी, बिनाओ सुनहो एक दीना, देहो दर्श नानक बलिहारी, जियाड़ा बाल बाल कीना, आस प्यासी पेर कैताई, ज्यो चात्रिक बूंदे रे, कहो नानक जियाड़ा बलिहारी, देहो दर्स प्रभ मेरे, सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुबाए, दर्शन परसया गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए, होवै सिफत खसाम दी, नूर अरसहु कुरसहु चटिया, तुद डिठे सच्चे पाति साह, मल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सच्चा पाति साह, सिर साहां दै साहु, जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावे साहो।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभाओ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद राग सूही महला पहिला चौपदे घर पहिला

निशान गावे को गुण वडयाचार गावे को विद्या विखम विचार गावे को साज करे तन खेह गावे को जी लै फिर देह गावे को जापै दिसै दूर गावे को वेखै हादरा हदूर कथना कथी न आवै तोट कथ कथ कथी कोटि कोट कोट देदा दे लै दे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विगसै वे परवाह साचा साहिब साच नाए भाख्या भाव अपार आखह मंगह देह देह दात करे दातार फेर के अगै रखिया जित दिसै दरबार मुहाओ के बोलन बोलिया जित सुन धरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवै जानिया सब आपे सचियार थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविया गुणी निदान गाविया सुनिया मन रखिया भाव दुख पर हर सुख घर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हाउ जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई तीरथ नावा जे तिस भावा विन भाने के नाए करी जेते सिरठ उपाई वेखा विन करमा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर मानिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुग चार यार जा होर दसुनी होए नवा खंडा विच जानिया नाल चलै सब कोए चंगा नाउर खाए कै जस कीरत जग ले जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतया गुण दे तेहा कोय ना सुजई जे तिस गुण कोय करे सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनिया धरत धवल आकाश सुनिया दीप लू पाताल सुनिया पोहे ना सकै काल नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास सुनिया ईसर बर्मा इंद सुनिया मुख साला हनुमंद सुनिया जोग जुगत तान भेद सुनिया सासत सिमृत वेद नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास सुनिया सत संतोख ज्ञान सुनिया अठ सठ का इसनान सुनिया पढ़ पढ़ पावह मान सुनिया लागै सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास सुनिया सरा गुणा के गाह सुनिया सेख पीर पात साह सुनिया अंधे पावह राह सुनिया हाथ होवै असगाह नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास मन्ने की गत कही ना जाए जे को कहै पिछै पछुताए कागद कलम ना लिखन हार
मन्ने का बह करण विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्नै सुरत होवै मन बुद्ध मन्नै सगल भवन की सुध मन्नै मुहे चोटा न खाए मन्नै जाम कै साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्नै मार्ग ठाक न पाए मन्नै पत स्यो प्रगट जाए मन्नै मग न चलै पंथ मन्नै धर्म सेती संबंध

असंख जाप असंख भाव असंख पूजा असंख ताप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह है उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह भख सार असंख मोन लिव लाए तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूरख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गाल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेच मल भख खाहे असंख निंदक।

तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कह है सिर पार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखान जिन एह लिखे तिस सिर नाहे जिव फुरमाए तिव तिव पाहे जेता कीता तेता नाओ विन नावै नाही को थाओ कुदरत कमन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार भरिया हाथ पैर तन देह पानी धोतै उत्तर सो खेह मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लइयै ओह धोए भरिया मत पापा कै संग ओह धोपै नावै कै रंग पुन्नी पापी आखन नाहे कर कर करना लिख लै जाहो आपे बीज आपे ही खाहो नानक हुक्मी आवहो जाहो तीरथ तप दया दत दान जे को पावै तिल का मान सुनिया मन्या मन कीता भाओ अंतरगत तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए विन गुण कीते भगत ना होए स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सो वेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन से रुति माहो कवन जित हुआ आकार वेल ना पाया पंडती जे होवै लेख पुराण वक्त ना पायो कादिया जे लिखन लेख कुरान थित वार ना जोगी जाने रुत माहो ना कोई जा करता सिर ठीकाओ साजे आपे जाने सोई केव कर आखा केव सालाही क्यों वरनी केव जाना नानक आखन सब को आखै एक दू एक सियाना वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जा का होवै नानक जे को आपाओ जाने अगै गया ना सो है पाताला पाताल लख आगासा आगास ओड़क ओड़क भाल थके वेद कहन एक बात सहस अठार है कहन कतेबा असलू एक धात लेखा होए ता लिखिया लेखा होए विनास नानक वड्डा आखिया आपे जाने आप सालाही सालाहे एति सुरत ना पाइया नदिया अतै वाह पवह समुंद ना जानिया है समुंद साह सुल्तान गिरहा सेति माल धन कीड़ी तुलना होवनी जे तिस मन होना विसर है अंत ना सिफती कहन

आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे एहो अंत न जाणै कोए बहुता कहियै बहुता होए वड्डा साहिब ऊचा थाओ ऊचे उपर ऊचा नाओ एवड ऊचा होवै कोए तिस ऊचे कौ जाणै सोए जेवड आप जाणै आप आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना तमाए केते मंगह जोध अपार केते आ गणत नहीं विचार केते खाप तुटह वेकार केते लै लै मुकर पाहे केते मूर्ख खाही खाहे केते आ दुख भूख साध मार एह पे दात तेरी दातार बंद खलासी भाणै होए होर आख ना सकै कोए जे को खाए क आखन पाए ओह जाणै जेतिया मुहे खाए आपे जाणै आपे दे आखह से पे के ई के जिसनो बक्से सिफत सालाह नानक पात साही पात साह अमुल गुण अमुल वापार अमुल वापारिये अमुल भंडार अमुल आवह अमुल लै जाहे अमुल पाए अमुला समाहे अमुल धर्म अमुल दीबान अमुल तुल अमुल परवान अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल कर्म अमुल फुरमान अमुलो अमुल आख्या ना जाए आख आख रहे लिवलाए आख है वेद पाठ पुराण आख है पढ़े करह वखियान आख है बरमे आख है इंद आख है गोपी तै गोविंद आख है ईसर आख है सिद्ध आख है केते कीते बुद्ध आख है दानव आख है देव आख है सुर नर मुन जन सेव केते आख है आखन पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे एते कीते होर करेह ता आख ना सकह केई के जेवड़ पावै तेवड़।

तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओहो वेखै उन्ना नदर ना आवै बहुता इहो बिडान आदेश तिसै आदेश आदि अनिल अनादि अनाहत जुग जुग एको वेस आसन लोए लोए भंडार जो किछ पाया सो एका वार कर कर विखै सिरजन।

धर्म खंड का यो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म। केते पवन पानी वै संतर, केते कान महेश, केते बरमे घाड़त घड़िया है। रूप रंग के वेश, केतिया कर्म भूमि मेर, केते केते तू उपदेश, केते इंद चांद सूर, केते केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवी वेश, केते देव दानव मुन, केते केते रतन समुंद, केतिया खानी, केतिया बाणी, केते पात नरिंद, केतिया सुरती सेवक, केते नानक अंत ना अंत, ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड, तथै नाद विनोद कोड आनंद, शर्म खंड की बाणी रूप, तथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप। ता किया गल्ला कथिया ना जाहे, जे को कहै पिछै पछुताए, तथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध, तथै घड़िया सुरा सिद्धा की सुध, कर्म खंड की बाणी जोर, तथै होर ना कोई होर, तथै जोध महाबाल सूर, तिन मह राम रहिया भारपूर, तिथै सीतो सीता महिमा माहे, ताके रूप ना कथने जाहे, ना ओहे मरह ना ठागे जाहे, जिन कै राम वसै मन माहे, तिथै भगत वसै के लोह, करहै आनंद सच्चा मन सोए, सच खंड वसै निरंकार, कर कर विखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै ता अंत ना अंत, तिथै लो लो आकार, जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार, विखै विगसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार, जत पाहारा धीरज सुनियार, अहरन मत वेद हथियार, भाओ खला अगन तपताओ, भांडा भाओ अमृत तित ढाल, घड़िया शब्द सची टकसाल।

आद मूरत थाप्यो सभ्य जिह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूरन पुरख अपार सर्व विश्व रचयो स्वयं भव गड़न भंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख आदेश धर्म धाम सो परम रहत अभूत अलख अपेस अंग राग नारंग जा कह जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्ब भंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्ब लायक सर्ब कायक सर्ब को प्रतपार सर्ब गंता सर्ब हंता सर्ब ते अनपेख सर्ब शास्त्र ना जान ही जिह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जा कह नेत भाखत नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र ना आव ही वह चित मद भार छंद त्वै प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनभव प्रकाश निस दिन अनास आ जान बाहु साहान साहु राजान राज भानान भान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनभूत अंग अभा अपंग गत मित अपार गुण गण उदार मुन गण प्रणाम निरपय निकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड आलिस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा भर नाडय आन दंड बाडय चाचरी छंद त्वय प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निरनामे अकामे पुजंग प्रयात छंद चतर चक्कर करता चतर चक्कर हरता चतर चक्कर दाने चतर चक्कर जाने चतर चक्कर वर्ती चतर चक्कर भरती चतर चक्कर पाले चतर चक्कर काले चतर चक्कर पासे चतर चक्कर वासे चतर चक्कर माने आय चतर चक्कर दाने आय चाचरी छंद ना सत्रै ना मित्रै ना परमंग ना पितरै ना कर्मंग ना काय अजन्मंग अजाय ना चित्रै ना मित्रै परे है पवित्रै पृथिसै अधिसै अदृश्य अकृसै भगवती छंद त्वै प्रसाद कथते के आ छिज देसै के आ भिज भेसै के आ गंज करमै के आ भंज भरमै के आ भिज लोकै के आ दित सोकै के अवधूत वरण के विभूत करण के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुजा है के आशोक वरण के सर्वा अपरण के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्मंग स्वरूप के अनुभव अनुप के आदि अदेव है के आप अपेव है के चित्रंग विहीन के एक अधीन के रोजी रजाक रहीमै रिहाकै के पाक बेऐब हैं के गैबुल गैब हैं के अपबुल गुनाह हैं के साहान साह हैं के कारण कुनिंद हैं के रोजी देहांद हैं के राजक रहीम हैं के कर्मंग करीम हैं के सर्वंग कली हैं के सर्वंग दली हैं के सर्वतर मान्याय के सर्वतर दान्याय के सर्वतर गौनाय के सर्वतर पावनाय के सर्वतर देसाय के सर्वतर पेसाय के सर्वतर राजाय के सर्वतर साजाय के सर्वतर दीनाय के सर्वतर लीनाय के सर्वतर जाहो के सर्वतर पाहो के सर्वतर देसाय के सर्वतर पेसाय के सर्वतर कालाय के सर्वतर पालाय के सर्वतर हंता के सर्वतर गंता के सर्वतर पेखी के सर्वतर पेखी के सर्वतर काजाय के सर्वतर राजाय के सर्वतर सोखाय के सर्वतर पोखाय के सर्वतर तराणाय के सर्वतर प्राणाय के सर्वतर देसाय के सर्वतर पेसाय
ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਮਾਨਿਆ ਸਦੈਵੰ ਪਰਧਾਨਿਆ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਥਾਪਿਆ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭਾਨੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਮਾਨੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਇੰਦਰੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਚੰਦਰੈ ਕਿ ਸਰਬੰ ਕਲੀਮੈ ਕਿ ਪਰਮੰ ਫਹੀਮੈ ਕਿ ਆਕਲ ਅਲਾਮੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਮੈ ਕਿ ਹੁਸਨੁਲ ਵਜੂ ਹੈ ਤਮਾਮੁਲ ਰਜੂ ਹੈ ਹਮੇਸੁਲ ਸਲਾਮੈ ਸਲੀਖਤ ਮੁਦਾਮੈ ਗਨੀਮੁਲ ਸਿਕਸਤੈ ਗਰੀਬੁਲ ਪਰਸਤੈ ਬਿਲੰਦੁਲ ਮਕਾਨੈ ਜਮੀਨੁਲ ਜਮਾਨੈ ਤਮੀਜੁਲ ਤਮਾਮੈ ਰਜੂਅਲ ਨਿਧਾਨੈ ਹਰੀਫੁਲ ਅਜੀਮੈ ਰਜਾਇਕ ਯਕੀਨੈ ਅਨੇਕੁਲ ਤਰੰਗ ਹੈ ਅਭੇਦ ਹੈ ਅਭੰਗ ਹੈ ਅਜੀਜੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ ਗਨੀਮੁਲ ਖਿਰਾਜ ਹੈ ਅਜੀਜੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ ਗਨੀਮੁਲ ਖਿਰਾਜ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤ੍ਰਿਮੁਕਤ ਬਿਭੂਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਸੁਜੁਗਤ ਸੁਧਾ ਹੈ ਸਦੈਵੰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਭੇਦੀ ਅਨੂਪ ਹੈ ਸਮਸਤੋਪਰਾਜ ਹੈ ਸਦਾ ਸਰਬਸਾਜ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਦੈਵਲ ਅਕਾਮ ਹੈ ਨਿਰਬਾਧ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਗਾਧ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਓਅੰਗ ਆਦਿ ਰੂਪੇ ਅਨਾਦਿ ਸਰੂਪੈ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ ਤ੍ਰਿਵਰਗੰ ਤ੍ਰਿਬਾਧੇ ਅਗੰਜੇ ਅਗਾਧੇ ਸੁਭੰ ਸਰਬ ਭਾਗੇ ਸੁ ਸਰਬਾ ਅਨੁਰਾਗੈ ਤ੍ਰਿਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਛਿਜ ਹੈ ਅਛੂਤ ਹੈ ਕਿ ਨਰਕੰ ਪਰਨਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥਿਉਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਸਦੈਵੰ ਸਦਾ ਹੈ ਵਿਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰਜੁਗਤ ਅਨੂਪ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਸਦਾ ਹੈ ਵਿਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਅਨੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰਜੁਗਤ ਅਨੂਪ ਹੈ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਅਭੰਗ ਹੈ ਅਨੰਗ ਹੈ ਅਭੇਖ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਭਰਮ ਹੈ ਅਕਰਮ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਜੁਗਾਦ ਹੈ ਅਜੈ ਹੈ ਅਭੈ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਧੂਤ ਹੈ ਅਨਾਸ ਹੈ ਉਦਾਸ ਹੈ ਅਧੰਧ ਹੈ ਅਬੰਧ ਹੈ ਅਭਗਤ ਹੈ ਬਿਰਕਤ ਹੈ ਅਨਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਿਚਿੰਤ ਹੈ ਸੁਨਿੰਤ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਦੇਖ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਭੇਖ ਹੈ ਅਟਾਹ ਹੈ ਅਗਾਹ ਹੈ ਅਸੰਭ ਹੈ ਅਗੰਭ ਹੈ ਅਨੀਲ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਅਨਿਤ ਹੈ ਸੁਨਿਤ ਹੈ ਅਜਾਤ ਹੈ ਅਜਾਦ ਹੈ ਚਰਪਟ ਛੰਦ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਰਬੰ ਹੰਤਾ ਸਰਬੰ ਗੰਤਾ ਸਰਬੰ ਖਿਆਤਾ ਸਰਬੰ ਗਿਆਤਾ ਸਰਬੰ ਹਰਤਾ ਸਰਬੰ ਕਰਤਾ ਸਰਬੰ ਪ੍ਰਾਣੰ ਸਰਬੰ ਤ੍ਰਾਣੰ ਸਰਬੰ ਕਰਮੰ ਸਰਬੰ ਧਰਮੰ ਸਰਬੰ ਜੁਗਤਾ ਸਰਬੰ ਮੁਕਤਾ ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਮੋ ਨਰਕ ਨਾਸੇ ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਕਾਸੇ ਅਨੰਗੰ ਸਰੂਪੇ ਅਭੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ ਪਰਮਾਥੰ ਪਰਮਾਥੇ ਸਦਾ ਸਰਬਸਾਥੇ ਅਗਾਧ ਸਰੂਪੇ ਨਿਰਬਾਧ ਵਿਭੂਤੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ ਨਿਰਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ ਸਰਬੰਗੀ ਅਨੂਪੇ ਨਾ ਪੋਤਰੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰੈ ਨਾ ਸੱਤਰੈ ਨਾ ਮਿੱਤਰੈ ਨਾ ਤਾਤੈ ਨਾ ਮਾਤੈ ਨਾ ਜਾਤੈ ਨਾ ਪਾਤੈ ਨਿਰਸਾਕੰ ਸਰੀਕ ਹੈ ਅਮਿਤੋ ਅਮੀਕ ਹੈ ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਅਜੈ ਹੈ ਅਜਾ ਹੈ ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੇ ਜਾਹਰ ਜਹੂਰ ਹੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ ਹੈ ਹਮੇਸੁਲ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਕੇ ਹੁਸਨਲ ਚਿਰਾਗ ਹੈ ਕੇ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਹੀਮ ਹੈ ਕੇ ਰੋਜੀ ਦੇਹੰਦ ਹੈ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਹਿੰਦ ਹੈ ਕਰੀਮੁਲ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕੇ ਹੁਸਨੁਲ ਜਮਾਲ ਹੈ ਗਨੀਮੁਲ ਖਿਰਾਜ ਹੈ ਗਰੀਬੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ ਹਰੀਫੁਲ ਸਿਕਨ ਹੈ ਹਿਰਾਸੁਲ ਫਿਕਨ ਹੈ ਕਲੰਕੰ ਪਰਨਾਸ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਅਗੰਜੁਲ ਗਨੀਮ ਹੈ ਰਜਾਇਕ ਰਹੀਮ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਜੁਬਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਕੰ ਪਰਨਾਸ ਹੈ ਬਿਹਿਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੁਲ ਗਵਨ ਹੈ ਹਮੇਸੁਲ ਰਵਨ ਹੈ ਤਮਾਮੁਲ ਤਮੀਜ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਅਜੀਜ ਹੈ ਪਰੰ ਪਰਮ ਈਸ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਅਦੀਸ ਹੈ ਅਦੇਸੁਲ ਅਲੇਖ ਹੈ ਹਮੇਸੁਲ ਅਭੇਖ ਹੈ ਜਮੀਨੁਲ ਜਮਾ ਹੈ ਅਮੀਕੁਲ ਇਮਾ ਹੈ ਕਰੀਮੁਲ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਤ ਜਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਚਲੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਸੁਭਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਬਿਭੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਪਸਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਲੰ ਅਨੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਅਭੰਗ ਹੈ
मद भार छंद त्वै प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण मुदाम अर बर अगंज हर नर प्रभंज अन गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम अन छिज अंग आसन अभंग उपमा अपार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अभंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास त्रित धर तुरास आ जान बाहु एक सदाहु ओंकार आदि कथनी अनादि खल खंड ख्याल गुरबर अकाल घर घर प्रणाम चित चरण नाम अन छिज गात आजिज न बात अन झंझ गात अन रंज बात अन तुट भंडार अन थट अपार आडीठ धर्म अत ढीठ कर्म अन बरन अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त्वै प्रसाद करुणालय है अरकालय है खल खंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ब उबारण है त्रित के धरण है जग के करण है मन मान्या है जग जान्या है सर्बंग पर है सर्बंकर है सर्ब पास्या है सर्ब नास्या है करुणाकर है विश्वंग पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खल खंडस है पार ते पार है करुणा कर है अजपा जाप है अथपा थाप है अकृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है अकृता कृत है धरणी त्रित है अमितेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता मृत है अजबा कृत है अमृता मृत है नर नायक है खल कायक है विस्वंग पर है करुणालय है निरपनायक है सर्व पायक है भव भंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हर्ता हार है परमात्म है सर्व आत्म है आत्म बस है जस के जस है पुजंग पर्यात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग ताम संग सांत रूपे नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो सांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग बेपूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी नारागे नारंगे नारूपे नारेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे पुजंग प्रयात छंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामंग बेपूते समस्तुल स्वरूपे को कर्मंग परनासे सोतर्मंग बेपूते सदा सचदानंद सतरंग परनासी करीमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब बेपूते गजायब गनीमे हरियंग करियंग करीमुल रहीमे चत्तर चक्रवर्ती चत्तर चक्र भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्व जुगते दो कालंग परनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपूते दो कालं परनासी

मूढ़ काच भेद ना जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपुनी बुद्ध है जेति बरनत, भिन्न भिन्न तुहे तेति तुमरा लखा ना जाय पसारा। किह बिद सजा प्रथम संसारा, एकै रूप अनूप स्वरूपा। रंक भयो राव कही भूपा, अंडज जेरज सेतज कीनी। उत भुज खान बहुर रच दीनी, कहूं फूल राजा हुवै बैठा। कहूं सिमट भयो शंकर एकैठा। सिगरे सरिष्ट दिखाए अचम, भव आदि जुगाद स्वरूप स्वयं। भव अबरछा मेरी तुम करो, सिखे उबार असिखे संघरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच्छ करो रान काता। जे अस तुज तब सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो काल को एक बार त्यै है, ताके काल निकट नह है।

कछ देश विदेश ना बूझ, ऐसे मेरा मन बिखिया बिमोहिया, कछ आरा पार ना सूझ, सगल भवन के नायका, एक छिन दर्श दिखाए जी, मलन पई मत माधवा, तेरी गत लखी ना जाए, करहो कृपा भ्रम चूकई, मैं सुमत देहो समझाए, जोगीसर पावह नहीं, तो गुण कथन अपार, प्रेम भगत कै कारण,

तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा। तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा वर्ण न साको। तू ठाकुर ऊच पग बना, किब कर आखा किब सालाही, क्यों वरनी किब जाना। नानक आखण सबको आखै, एक दू एक सियाणा। कथना कथी न आवै तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोटे। ना हो जति सती नहीं पढ़या, मूर्ख मुग्ध जन्म भया। प्रणबत नानक तिनकी सरण, जिन तू नाही विसरिया। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। सलोक नानक नाम नाम जप जपया, अंतर बाहर रंग गुरपूरै उपदेसया। नरक नाहे साध संग, नानक नाम नाम जाप जपया, अंतरे बाहर रंग गोरपूरै उपदेसया। नरक नाहे साध संग, पौड़ी

कहै नानक सुनहो संतहो, साचा नाम मेरा वाजे पंच शब्द, कार सपागे शब्द वाजे, पंच दूत तुद वास कीते, तुर कारम पाया तुद जिन का। कह नानक तह सुख हुआ, ओ नंद सुनो बड़ पागी हो, पार भरम प्रभ पाया, दुख रोग संताप उतरे,

दर्शन परसया गुरु के जन्म मरण दुख होवे सिफत खसाम दी नूर अरसहो कुरसहो।

0: इतनी हाजरी दर प्रवान होइया पुलना देखे मां सतगुरु कृपा करन सबन दिया हाजरियां दर प्रवान करन दरों करों गुरसिखी जीवन की दात गुरु चरणा नाल प्रेम अते प्रतीत बख्शिश करन बुलाओ पते आखो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने शब्द कीर्तन सरवण करवा रहे सन बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भाई गुरजीत सिंह जी हजूरी रागी सचखंड श्री दरबार साहब वाले का रागी जत्था संगता वालों भाई साहब जी के जत्थे का बहुत बहुत धन्यवाद। हुण बेनती करदे हां बहुत ही सत्कारयोग ज्ञानी भाई साहब बाबा महेंद्र सिंह जी पड़ी वाले कि वह आप जी गुरमत विचार सरवण करवाउण जी आप जी गुरमत विचार सरवण करो जी ते गुरु साहब जी दियां खुशियां प्राप्त करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

स्वामी सर्ब रहया पर पूरे अंतर बाहर हर प्रभ एको मिल हर जन मंगल गाए जन नानक दूजी लाव चलाई अनहद शब्द बजाए जन नानक दूजी लाव चलाई अनहद शब्द बजाए।

मन चौ भया बैरागिया बलराम जियो संत जना हर मेल हर पाया वड भागिया बलराम जियो निर्मल।

लेखा छोड़ अलेख है छूट है, हम निर्गुण लेहो उभारी। सद बख्शेंदा सदा मेहरबाना, सबना दे आधारी।

हाँ तुद बिन अवर ना जाना, तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाना। जो सेवह तुद जी, जन नानक तिन कुरबाना। हर त्यावह तुद जी, से जन जुग मैं सुख वासी।

तेरे अनेक पढ़े बो सिमरत शास्त्र जी, कर किरिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड़ अवर ना कोई,

तेरी बरिया, अवर काज तेरा कितै ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम, सरंजाम लाग पवजल तरन कै।

मोर अच्छा निज करदे करिए, सब बैरन को आज संघरिए, पूर्ण हुए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बार चाहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए, हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तो जुजू।

जिसका सबस आधारो, जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उदारो। एह वस्त तजी नह जाई, नित नित रख उर तारो। तम संसार चरण लग तरिय, सब नानक ब्रह्म पसार।

गाए जाको कृपा तारी सो सुखिया तने उस जन्मा नानक तिस बलिहारी गुण निदान गुण तिन ही गाए।